वे खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले, वे गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद, वे पीपड़ी ले फूंक ले, हवानी भर ली के अंदर।